0: हाला हेतली आली हम आला तिले बेले ई खाती हाले हम आला तिले आली खाती आला हे के तिले बेला बाहले बेले वेले लो असुत बाना खडा वाली बा हे मेने ले थे मा खाती लाले बेला सोए नवतले दिन असुत बाना येशु स्वास के नाम में फले आऊ
1: रे के मा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हम आला के तियाले हम आ
1: तेरे बे दे दे रे वाती दा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माती लिया ले ओबने सुति देवा स्वामी वंश ओबान सी उदाउ करन ने किने कनाट

याज्ञा करामः। सर्वबलधारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसो मेनव। मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लेबेवा। आमेन।